मौत मार दिते बंदे ता ईगो मार दी वाजी वाह गैरू संधु संधु ने बड़े रीझ नाल बड़े दिल दे नेड़े हो के गीत गाया ते तुसी इस गल नू भावें असी नचण भुड़कण वाला गीत समझिए ते भावें असी इनू समझिए कि गीत साड़ी सानू कुछ सोचण ते मजबूर करदा पर हाँ दरअसल गीत ते मायने कई होर ने कई दे रूप अखरे ने जिहदे विच निकल के सानू लगदा है कि असी कुछ ना कुछ जिहड़ा ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ।